सदा सुख बसहि, सदा सच रत्ता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई मनमुख अंधले ज्ञान विहूने दूजे पाए खुआई।

सुख होई गुरजीवड गुरजीवड दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा।

बयाण ज्योतिष पावे समरथ सोचिए हिलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख अप

छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पूंडड़े नाम विसारिया बूढ़े क्या तिस चारो,

पंच पदे अपना कर मूस्त राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा कर दर राख है जे रस चाख है जो

जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलताओ ठाक रखो कर अपने गुर मिले ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो।

चात्रक जल जो चात्रक जल बिन बिल लावै बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया पाए सुपहाई।

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउं जानौ साकत का बकना इउं जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशाद्यो इहु मन।

सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंध कमल बिगसया देखो अचरज भया।

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म जन।

हर के संत जपहो हर जपना, हर संत चलाए हर नाली, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली, हर हर जपन।

सुख गर्दव पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचियावत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग में पवित्र पद पवित्र पुनीत जात अकार्थ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म।

वाम मांगौ राम ते सब थोक मानुख कौ जाचत श्रम पाइय प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ कुखे मु

बिन गुर मूड भय है मनमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहो हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाहा हर हर हर जस

सुख आराधन दुख आराधन बिसरै ना काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा बिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखन सुनन सुनावनो मन महेंद्रिय साच, पूर रहयो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है, सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ, जो करे सो होई। खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं।

तिन प्रभ आप पुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत सियो, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगसियो पेख रंग कुसुंब को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल सियो पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत को ताव है बहु पांती, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान

रहाव, दहदिस रव रहया जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गाव है करते, सेजन कबहु न मरते चूर, तांद बांध बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर, सुख सम

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुण सत गुण दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहा जो

इस हर धन का शाह हर आप है संत हो। इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो, केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो, शीश

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले बिख बीजै बिख खाए। जम काल बाधा तृष्णा दाधा बिन गुर कवन छड़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए। अठसठ तीर्थ गुर शब्द दिखा।

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वड

करते आवहो सुन हर गुण तीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म

आनंदिनो शब्द रवहो, अनहद शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए, हर गुण गाव हो नारी, आनंदिन भगत करहें गुर आ गए, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसे

सब महे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम, गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम, प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, घट घट रवया सोई गुरमत।

ज्यों हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वड्याई, एक परम भव है अभिमाना। बिलावल महला तीजा।

हर हर जागते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

आई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसार वेखै, बहुर ना मरै ना जम पेखै, कर ही मह सब कोट निधान, सतगुर दिखाए गया अभिमान, सद ही लागा सहज ध्यान, अन दिन गावै एको नाम, इस जुग मह वडियाई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखां तह रहया समाई।

बलिहारै बिलावल महला पंजवां बिखै बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली।

आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

साध संग इस मन है उदारो मत बुद्ध सुरत नाहीं चतुराई ता मिलिए जान ले मिलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया।

संग समावो सास सास नह विसरै अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो।

तो अवरकाश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

साध संग मन तन हितै फिर दुख न जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लिवलाई किल विख उतर है शुद्ध होए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम।

करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

दृष्ट दृष्टाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै।

बिलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीद नाम संग मनुआ गीद नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय जत कत पेख हर गुणी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह आकार नहीं मेदनी, सदगुर जोग का तहां निवासा, जह अवगत नाथ अगम तनी।

फलत फलत होहे दोहें सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहाव उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होव हमीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म

निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जोन मह किरत पया पूर्व कमाणे शोड है नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया।

खिनमह वेश करह नटुआ ज्यों मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार विथार कन्हेरे सुर

जे कुटंब छोड़ पर पवन करहें ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

संत हो, सतगुर खेप निवाही संत हो, हर नाम लाहा दास कौ दिया, सगली त्रिशन उलाही संत हो। रहाओ।

तरहा नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायणा।

तुझे पछान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुरु नाम दिया कुशल थिया।

अक्षंत। प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे,

भरपूर। देह देह आख सब कोई जय भावे तै दे, गुरु द्वारे देवसी तिखानवारे सोए, टंडोलत ढूंढत हों फिरी।

विचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख।

सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रैसत अंगुल वाई कहिय, तिस कहो कवन अधा।

नानक आए से प्रवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा। गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें, ओए पहाड़े चलन अपने नित झूठ।

पौड़ी मनमुख मोह गुबार है दूजै भाए बोलै दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै गुरमुख नाम ते आई है मथ तत कढोलै अंतर प्रगास

हर हार हर उड़तारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चली। सत